0: ব্যাংকিং ফেমস বিলি চোদি এটিএম মোবাইল দে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ গোপ্য বিবরণ আরি খাই বিলে তুই মাধ্যম ক্যারে নিও দেপ্রে ছালি জানকারি রি বিষয়া নিও কল পরিমো সময় নিও ঠকদিল খামো ব্যাংকের বে কর্মচারী বীরা নিও দেপ্রে বিবরণ রি বিষয়া ব্যাংকি নীল পরিমো নিও তানে সতর্ক তানা ঠদরিকা বচেনা সিদ্ধার্থ ব্যাংকের ক্যালে জনহিতারি জারি সন্দেশ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদৈব ভরিলাই के तपाईलाई कुनै पनि रगत परीक्षणको लागि पोखरा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता छ?
2: के तपाईँ गुणस्तरीय प्रयोगशालाको खोजीमा हुनुहुन्छ?
1: यदि त्यसो हो भने अब चिन्ता नलिनुहोस्,
2: किनभने वीर अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत मेडिकल टेक्नोलोजिस्टद्वारा सुन्दर नगरी कुस्माको बडगाउँमा खोलियो
1: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर सिडिसी।
2: हाम्रा सेवाहरू:
1: होल बडी चेकअप,
2: थाइराइड परीक्षण, भिटामिन डी चेक जाँच,
1: मधुमेहको सम्पूर्ण चेक जाँच, एच बी A1C जाँच, लिपिड प्रोफाइल, लिभर फंक्शन टेस्ट, LFT,
2: युरिक एसिड, बाथ, टाइफाइड परीक्षण,
1: ग्यास्ट्रिकको परीक्षण,
2: मोटोपनको परीक्षण,
1: गर्भ परीक्षण, निसन्तान परीक्षण एवं पाठ्यघरको क्यान्सरको परीक्षण,
2: रगत वृय एवं दिशा पिसाब परीक्षण।
1: पुनश्च यहाँ हरेक दिन अत्याधुनिक प्रविधिको मेसिनद्वारा धौलगिरीमै पहिलो पटक थाइराइड तथा भिटामिन डी को चेक जाँच मात्र 1 घण्टामा गरिन्छ।
2: सम्पर्क स्थान:
1: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर, बडगाउँ, कुस्मा पर्वत, बागलुङ मेडिकल हल रहेको नयाँ भवन सँगै।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 0674202727, 0674202727, मोबाइल नम्बर 98511918।
1: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर, बडगाउँ, कुस्मा पर्वत, कुस्मा पर्वत।
3: प्राविधिक शिक्षा पढ्ने सुवर्ण अवसर। पुनः प्रवेश परीक्षा 2083 सम्बन्धी सूचना: एसई 2082 पूरक परीक्षाबाट न्यूनतम 2 GPA अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई सीटीबीटीबाट सम्बोधन प्राप्त। यस धौलागिरी प्राविधिक शिक्षा प्रतिष्ठान बागलुङमा रिक्त रहेको केही सीटमा शैक्षिक सत्र 2083-84 भर्नाका लागि हेल्थ असिस्टेन्ट, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी वा फार्मेसी कार्यक्रममा भर्ना आवेदन फारम खुलेको जानकारी गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही मिति 2083 साल असार 31 गतेसम्म। आवश्यक कागजातहरू: ग्रेडसिट नेटबाट डाउनलोड गरेको प्रश्न बुझिने कपी, हालसालै एसई उत्तीर्ण गर्नेहरूको हकमा एसई प्रवेश पत्र सक्कलको प्रतिलिपि, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्र सक्कलको प्रतिलिपि, फोटो हालसालै खिचेको 35x45 mm, आवेदन दस्तुर 1000 मात्र। विस्तृत जानकारीको लागि धौलागिरी प्राविधिक शिक्षा प्रतिष्ठान बागलुङ नगरपालिका 4 द्वारेगौडा बागलुङ, सम्पर्क नम्बर 0684200001, 24003, 98571917, 98576567, 98451720736।
4: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज, रेडियो दिदी बहिनी 95.2 MHz।
5: बिहे पनि गर्यो तर विडम्बना, सूर्यले अर्को बिहे गर्छ, अनि रोजिनाले त्यो गाउँ नै छोडेर, त्यो घर नै छोडेर त्यहाँबाट टाढा जान्छे।

हजुर नसुदेत लुमङका च्यादगो थोमे नसुदेत हामीले उलापेख संगीत मे थजाको कला या दय त धागो यम दौख जिने अतिस विशेष भजन सिन बोले मिसिन बोले अथे प्याखन मिसिन बोले संस्कृति कथन त नसुदेत पूजाको चलन दु वस पोले त संगीत नृत्य बज अथे मे या संरक्षण कर्ता त खान धागो यम दौख चिने अतिको गुरुदेव कथन भावना आदरण उल्लेख सम्मान कथन विधि पुर्याना पूजाको चलन दु थुक पूजाले कला अनुशासन व परम्परा या संरक्षण जिगुन विश्वास दु पुस्तक पुसानिसे झिगो निवासमा चाहिँ वस पोले महत्व उच्च जुगुन चिसन त्यागा छन् चुनागु दु अथे नुवा कोरिया छरे चुए कपलास धागु थ्यादु थुके त कपिलेश्वर महादेव कथन मस्यु अथे कपिलेश्वर महादेव नसे देव तखन त्यागो या मुख्य नसे देव भात्न दमन वस पोले ख थसगु बसाग नसे देव न चिसन जानकारी बिया अथे ज्याज ख झिगो छिक्लाका कला सृजनय आकार लगात व्यापी छगु कथन आकार विपी कलाकार कलाकार मसिकादु अले कलाकार जित धैर्यता लगनशीलता निसे अभ्यास साधना न एकमा अथे संघर्ष संघर्ष खनावै चुनौती च्यालेन्ज खनावै थोपथा अनुभवी जितका छ बालामा मार्गदर्शन निर्देशन याईमा गुरुसम्म तयार चाहिँ छिस कलाकार जित अफ्री अलिक कला क्षेत्र पके थुक्दा ओल्ला छ चिगो पला सुधालाई आउने त मेगो संगीत थन मेगो मेदु खुए ओला हे खुए मखाजी थो मे चिगो हनुमा मेजु लोसन पटरिया थके सुन चङ्गु दु लै जिल्ला मित्र न्यू बजारे अलि चोस कथी दुर्गलाल श्रेष्ठ हजुर जनकवि दुर्गलाल श्रेष्ठ वेकन च्यादीको थ संकिपा राजमती मेख आइतेछि त मे पखे भने मेजु लोसन पटरिया छ

हजुर, मेजु लोचन भट्टराई साथ हो नवथी म्याली मेजु खाउेका अथे ज्याजो चिगु नेवादव नेवादव शनिबार आइतबार निजु गएका वापतिक टेक्निकली एसिस्टेन्ट निम्ति दिथौ सुरेशजी अहिले ज्याजो छि कलाकार सिम्बी कला कलाकार मसिकाई कलाबले चुनाव क्रिएसन सृजना कला आकार देखिपि आकार बिपि आकार लगातार ब्यापी सुन व्यक्ति तह कलाकार तर कलाकार जी त उसले अपमोजो गुली चिसा सोचाई सुन कलाकार क्षेत्र पक्के हुने त उयो त धैर्य लगनशीलता संघर्ष साधना अध्ययनशील ध्वजाको गुण त देहमा तुकिया नप्नमा आत्मविश्वास अलि उद्देश्य क्लियर जीमा स्पर्शजीमा कला छगु कथ बालाको सौन्दर्य ख समा ख चुनाव कला सृजना प्रकृति लगसुनी सुलासङ्गो शक्ति स्रोत न ख थुकिन चिता आनन्द दिई धैर्य छुका थुक बि गौलेन असहज अवस्था किमको प्रोत्साहन बि जीवन निपुको अपुको मयतन हपा देव बि अध आत्म अभिव्यक्ति चुनाव दुःख सुख नुवाय ख कन्त संगीत न्याप्ने ग्वालिया बिचुँदै ताथे व्यक्तित्व अभिवृद्धि उब्लेजी गौले चुनाव कला सृजना यता थतोको नुगले सक्षम थ्याबी कला क्षेत्र ग्वालीजी लिङ्का फै अले कलाकार पलायन जीवको पाखेन बचे या फै थुक्ता अफसन जीवको भाषा धर्म संस्कृति तजले लिङ्का फै थुक्ता मनचुनको जीवन सार्थक या फै आजीवने थन मेगो मेदो मेजु रिता महर्जुने सदुत हो प्रेम या पन्छी बोल रे गुप्तम बौ खले चोसकदी चण्डेश्वर महर्जन लेचना बिन्दु सन्तोष महर्जन आइदेछि थोमे पकिउने